0: पत्थरी किडनी को रोग कलेजो को रोग आदि को उपचार
1: दम खोकी मेडिकल फेल छाती को दाग माइग्रेन टाउ को दुखने टीनास गैस्ट्रिक अल्सर नाक कान घाटी आँखा को रोग को उपचार
0: छाला का रोग सेतो दुबी चाया पोतो डंडीफोर दाद एलर्जी खटिरा निको नभएका घाउहरु को सफल उपचार
1: थप जानकारी को लगी संपर्क सोलुसन आयुर्वेदा पाइल फिस्टुला नसा तथा हार्ट जोनी उपचार केन्द्र नीलकण्ठ नगरपालिका का तीन शांत बजार धादिंग बेसी होटल जनजीविका अगाड़ी
0: फोन नंबर 010-521-248 मोबाइल नंबर 98-41-14-94-84
2: समुदाय का लागी समुदाय को आवाज रेडियो धादिंग 106 मेगाहर्ज।

0: अनिमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस खुले राजियो
1: समुदाय का लागी समुदाय को आवाज रेडियो धादिंग 106 मेगाहर्ज।

0: होइन ढुक्क हुँ प्रभु महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्स के अभिकर्ता बनाऊ
1: प्रभु महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड
2: समुदायका लागि समुदायको आवाज रेडियो धादिङ 106 मेगाहर्ज

0: ढुक होइन ढुक्क हुँ प्रभु महालक्ष्मी लाइफ इन्सुरेन्स के अभिकर्ता बनाऊ
1: प्रभु महालक्ष्मी लाइफ इन्सुरेन्स लिमिटेड
2: समुदायका लागि समुदायको आवाज रेडियो धादिङ 106 मेगाहर्ज